0: शुभेंदु दा था।
1: चंद्रनाथ के दोस्त कासिम हत्याकांड के पीछे सियासी एंगल देख रहे हैं, तो चंद्रनाथ के घर वालों का आरोप भी यही है।
2: আমি আজকে নতুন সরকার যে গঠন করবে তার কাছে জানাবো যে আমার ছেলের মৃত্যু যেন শাস্তিটুকু হয়। আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন ঘটত।
1: বঙ্গাল পুলিশ কি কই টিমে কাতলো কো সরগর্মি সে তলাশ রহি হ্যায়। কুছ সন্দিগ্ধোঁ কি গিরফতারি ভি হুই হ্যায়, লেকিন যাঁচ টিম কা মাথা উস ওয়াক্ত ঠনকা জব হত্যা মে ইস্তেমাল কার অর বাইক পর ফর্জি নম্বর প্লেট কা খুলাসা হুয়া। पुलिस को शक है कि हत्याकांड में एक कार और कम से कम दो बाइक का इस्तेमाल किया गया। कार को कातिल मौके पर छोड़ गए, जबकि कार चला रहा हमलावर बाद में बाइक से भागा। मौके से बरामद कार का नंबर है WB74AK2270। नंबर की जांच की गई तो पता चला कि कार सिलीगुड़ी के रहने वाले जेम्स विलियम्स की है और उनकी कार घर में मौजूद थी, यानी हत्या में इस्तेमाल कार का नंबर फर्जी है। जेम्स के मुताबिक चंद दिनों पहले उन्होंने अपनी कार बेचने का पोस्ट एक वेबसाइट पर डाला था। संभव है कातिलों ने उसी पोस्ट के जरिए कार का नंबर हासिल किया। ठीक ऐसे ही हत्या में इस्तेमाल बाइक का नंबर पुलिस के हाथ लगा। बाइक पश्चिम बुर्दवान RTO में विभाष कुमार भट्टाचार्य के नाम पर दर्ज है, जिनका पता है क्वार्टर नंबर AB7/12 गुरुद्वारा रोड बर्नपुर हीरापुर वेस्ट बंगाल। नंबर की जांच की गई तो पता चला इस नाम का कोई भी शख्स मौके पर नहीं रहता।
3: सिलीगुड़ी थाना से कमिश्नर ऑफिस से फोन आया, उसके बाद हम लोग यहाँ आया, हमको मिला, हमको थाना में लेके गया, गाड़ी के लिए लेके गया और सारा जो भी उनको इंक्वायरी करना था किया, गाड़ी को चेक किया, चेसिस नंबर वगैरह रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मिलाया, उसके बाद में इंक्वायरी करके फिर
4: वैसा तो इस क्वार्टर में नहीं, सब तो नए हैं सर।
5: मेरे पाड़ा में कोई है जो पुराना
4: पुराना नहीं है।
1: सुनियोजित साजिश के तहत चंद्रनाथ की हत्या की गई। हत्या से पहले कातिलों ने रेकी की थी। अब बंगाल पुलिस कातिलों के चेहरे को बेनकाब करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। जांच टीम का कहना है कि कातिलों से जुड़े कुछ सुराग हाथ लगे हैं। बहुत जल्द इस हाई प्रोफाइल और सनसनीखेज हत्याकांड में बड़ा खुलासा होगा। सवाल यही है कि बंगाल की कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले कातिलों का सच क्या है? क्या हत्या के पीछे सियासी एंगल है या फिर वजह कुछ और है? पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
6: और अब आपको दिखाते हैं कि क्यों पश्चिम बंगाल के अंदर चुनावों में राजनीतिक हिंसा भड़कती है, क्यों पश्चिम बंगाल के बारे में कहा जाता है कि हिंसा और राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं। बंगाल की सत्ता पर बैठने वालों के चेहरे और पार्टी का झंडा तो बदलते हैं, लेकिन यहां का सियासी रक्त चरित्र नहीं बदलता। आखिर बंगाल में इतनी सियासी हिंसा की वजह है क्या?
1: बंगाल में सत्ता बदल गई, राजनीतिक हिंसा का दौर क्यों नहीं बदला? चुनावी नतीजों के बाद अशांत हुआ बंगाल, हिंसा हत्याएं आगजनी। ममता बनर्जी का शासन गया, बंगाल का रक्त चरित्र क्यों नहीं बदला? गोलियों की राजलीला, बंगाल में बदलाव के बाद बदले की आग। कैसे बदलेगा बंगाल का रक्त चरित्र? अब बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती। बंगाल में बीजेपी बदलाव के वादे और नारे के साथ आई, लेकिन ठाक के वही तीन पात। चुनाव नतीजों के बाद से बंगाल हिंसा की आग में झुलस रहा है। 7 से 8 हत्याएं हो चुकी हैं, 200 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, 450 के आसपास गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 1100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, लेकिन बंगाल शांत नहीं हो रहा है। चुनाव परिणाम आने के महज 48 घंटों के भीतर बंगाल के कई जिलों में हत्या, गोलीबारी, आगजनी, तोड़फोड़ और राजनीतिक दफ्तरों पर हमलों की घटनाओं ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। कई इलाकों में शव मिलने और पीट पीट कर हत्या करने के मामले दर्ज किए गए हैं। ममता बनर्जी को हराने वाले और बीजेपी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी के दिए को गोलियों से भून दिया गया।

0: बशीरहाट दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के गोडाउन पाड़ा इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता रोहित रॉय को गोली मार दी गई। कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में विजय जुलूस के दौरान बुलडोजर से एक दुकान और टीएमसी कार्यालय तोड़े जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लेनिन की मूर्ति भी तोड़ दी गई। हावड़ा, आसनसोल, कस्बा, टॉलीगंज, बीरभूम और दक्षिण 24 परगना समेत कई इलाकों में टीएमसी के कार्यालयों पर हमले हुए। आसनसोल के रानीगंज, बनपुर और बाराबनी क्षेत्रों में टीएमसी कार्यालयों के बोर्ड हटाकर उन्हें भगवा रंग से रंगने की तस्वीरें और वीडियो सामने आए। कोलकाता के बेलिया घाटा इलाके में टीएमसी कार्यकर्ता विश्वजीत पटनायक का शव उनके घर के बाहर मिला। परिवार ने आरोप लगाया कि हमलावर घर का दरवाजा तोड़कर उन्हें बाहर ले गए और पीट पीट कर हत्या कर दी। उत्तर 24 परगना के संदेश खाली और नजत इलाके में उपद्रवियों ने पुलिस और केंद्रीय बलों पर भी गोलीबारी की। इस हमले में थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी और केंद्रीय बलों के जवान घायल हुए। इलाके से बम से भरे बैग भी बरामद किए गए। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी बंगाल में हिंसा फैलाकर डर का माहौल बना रही है। उनका दावा है कि पार्टी के सैकड़ों कार्यालयों और नेताओं के घरों पर हमले हुए हैं। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि हिंसा फैलाने वाले टीएमसी समर्थक हैं, जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के देश में उपद्रव कर रहे हैं। और जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई है, बीजेपी कह रही है कि ये पॉलिटिकल हत्या है जो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने करवाई है।
1: प्लैंड है, जिसे कोल्ड ब्लडेड प्लान मर्डर। तुरंत अभिलंब पहले ममता बनर्जी को और अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार करिए।
2: राकेश जी,
1: नहीं तो आग लगेगा बंगाल में।
3: पकड़ के इनकाउंटर, जोगी बाबा की तरह इनकाउंटर। अभिषेक बनर्जी का एक अधिकारी, पुलिस अधिकारी है, वो पुलिस अधिकारी इस तरह के अपराधियों को संगठित करता है।
4: जब देखा भवानीपुर में भी इज्जत नहीं बचा। एक कहावत है, तुझको नहीं सजा दे पाऊं, तेरा साथी को तो कम से कम मारे।
5: आप ये सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी किसने ली थी? इलेक्शन कमीशन, देश के होम मिनिस्टर, तो उन्होंने ये कहा था कि हम लाखों सेंट्रल फोर्स भेजी है। सुनने में आया 3 लाख से ज्यादा।
0: बंगाल की सत्ता में आई और शासन की कमान संभालने जा रही बीजेपी इस वक्त शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या पर भड़क रही है। लेकिन सच ये भी है कि यही बंगाल का रक्त चरित्र है। और चुनौती 207 सीटें जीतने वाली बीजेपी के लिए है, जो बंगाल में बदलाव के नारे के साथ आई है।
6: पहले काम किया मुर्शिदाबाद में, लेनिन का स्टैचू को भी तोड़ दिया। वो सब पहले टीएमसी, अभी सब बीजेपी बन गए। तो बीजेपी और टीएमसी के बीच में जो जनवाद का एक फुटबॉल बना रहा है, आज वो वायलेंस है जो टीएमसी ने लेफ्ट के खिलाफ किया। लेफ्ट के हर दफ्तर को टीएमसी तोड़ा, आज बीजेपी वही हथियार इस्तेमाल करके टीएमसी को कर रही है। हम इसका निंदा करते हैं।
7: बंगाल चुनाव के बाद अब यूपी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। यूपी में अगले साल चुनाव हैं, जिसे लेकर योगी आदित्यनाथ से लेकर अखिलेश यादव ने अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया है। बंगाल में जिस तरह 30% अल्पसंख्यक वोट के बावजूद बीजेपी जीती है, अब ऐसा ही प्रयोग वो यूपी में लागू करने जा रहे हैं। सवाल अब यह है कि क्या बंगाल चुनाव ने यूपी के नतीजे तय कर दिए हैं?
8: अब वही सहारनपुर अपनी गति के लिए, अपनी प्रगति के लिए जाना जा रहा है, जिस सहारनपुर की पहले लोगों ने फतवे जारी कर करके दुर्गति कर रखी थी।
9: पश्चिम बंगाल में जीत से बीजेपी के हौसले उत्तर प्रदेश में और भी बुलंद हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ ने 22 सीटों पर प्रचार किया और 19 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। इस तरह पश्चिम बंगाल के चुनाव में योगी का स्ट्राइक रेट 90% रहा, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने 2027 के लिए मुद्दों की लाइन खींच दी।
8: देश के साथ धोखा देने वाले, भारत की संस्कृति के साथ धोखा देने वाले, भारत के राष्ट्रवाद को नुकसान पहुंचाने वाले राजनीतिक दलों को दफन करने में भी बहुत देर नहीं लगाएगी। चुनाव परिणामों ने इस बात का स्पष्ट संकेत किया है।
9: पश्चिम बंगाल के बाद बीजेपी ने जीत के लिए कमर कसी है, वहीं अखिलेश भी मैदान में उतर गए हैं। योगी आदित्यनाथ सहारनपुर के देवबंद पहुंचे, अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता गए। इस मुलाकात में अभिषेक बनर्जी भी वहां मौजूद रहे, जिन्होंने अखिलेश का स्वागत गले मिलकर किया। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से कहा, दीदी आप हारी नहीं है,
2: आप हारे नहीं है।
9: 2027 की चुनावी जंग योगी और अखिलेश के बीच सीधी होनी है। जो जितने दमदार तरीके से अपनी बात जनता तक पहुंचाएगा, जीत उसी की होगी। इसीलिए दोनों अपनी रणनीति पर चलना शुरू हो चुके हैं। बंगाल में स्टार प्रचारक रहे योगी आदित्यनाथ अपने राज्य में जनता को बंगाल चुनाव की तरह जाति से ऊपर उठकर वोट डालने को मनाने में जुटे हैं।
8: विकास में बाधक जो तत्व हैं, वे जाति के नाम पर बिखराव लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन बटना नहीं है, विभाजित नहीं होना है। इस तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, फतवे की संस्कृति पर विश्वास करने वाले, गुंडों को प्रश्रय देने वाले, बहन और बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले तत्व अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए जाति का सहारा लेते हैं। इनके द्वारा जब भारत की परंपरागत सनातन संस्कृति पर प्रहार होता है, इनके मुंह में फेविकोल लग जाता है।
9: बटोगे तो कटोगे का नारा देकर बीजेपी को चुनावी मजबूती देते आए योगी की अब अपने घर में परीक्षा है। इसीलिए वो विकास योजनाओं की सौगात के साथ बंगाल की तरह मुद्दों को सेट करना चाहते हैं।
8: और ये नहीं चल सकता है कि रहेंगे खाएंगे भारत में, रहेंगे भारत में और दुश्मन के गीत गाएंगे, ये नहीं चल सकता है। यह देश इसको स्वीकार नहीं करेगा।
9: योगी अगर बटोगे तो कटोगे की लाइन को बढ़ाकर हिंदू वोट को एकजुट करके जाति की चुनौती को धुंधला करके अखिलेश यादव के पीडीए वाले वार को कमजोर करना चाहते हैं, तो अखिलेश यादव ने कोलकाता में ममता बनर्जी से मिलकर साफ कर दिया कि चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाना जारी रहेगा।
10: ये मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया की तरह काम हुआ है, जिसमें जितनी भी संस्थाएं थीं, जिनका काम यह है कि निष्पक्ष चुनाव हो, उन तमाम संस्थाओं ने अपना क्रेडिबिलिटी खो दी।
9: अखिलेश यादव का कोलकाता जाकर ममता से यह कहना कि आप हारी नहीं है, अभिषेक को यह कहकर हौसला बढ़ाना कि कोई नहीं तुम अच्छा लड़े, साफ संदेश देता है कि विपक्ष हार के बावजूद एक साथ खड़ा रहेगा।
10: भारतीय जनता पार्टी ने जो जो बंगाल में किया है, उत्तर प्रदेश में, उससे कम किया उन्होंने, लेकिन ट्रायल वहीं पर किया। हालांकि बंगाल में इससे भी खतरनाक तस्वीरें आई होंगी, जो मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूं आपको। ये तस्वीर वो है जब उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हुआ था, फोर्सेस को लगा करके लोगों को वोट रोका गया।
9: तो बंगाल में हार के बाद विपक्ष नए सिरे से एकजुट हो रहा है, वोट चोरी की बात नई ताकत से कही जा रही है, ताकि 2027 के चुनाव को 2024 की तरह अपनी तरफ पलटा जा सके। लेकिन बंगाल चुनाव जीत कर उत्साह से भरी बीजेपी भी इस बार पहले से कई गुना ज्यादा शक्ति से विपक्ष को चुनौती देने को तैयार है।
7: बिहार में आज सम्राट चौधरी की सरकार का विस्तार हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 32 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण की खास बात यह रही कि पहली बार नीतीश कुमार के बेटे निशांत मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। शपथ ग्रहण के बाद मंत्रियों में बीजेपी के 15 मंत्री, जेडीयू के 13 और एलजेपीआर के 2, आरएलएम के और हम के एक एक मंत्री ने शपथ ली।
11: बिहार को इस वक्त का बेसब्री से इंतजार था। पटना के गांधी मैदान में कैबिनेट विस्तार का मंच सजा था। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के सीएम के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम समेत दिग्गजों का जमावड़ा था। पीएम मोदी मंच पर पहुंचे तो जोरदार स्वागत हुआ। नीतीश कुमार से भी पीएम गर्मजोशी से मिले। नीतीश कुमार ने पीएम का कंधा पकड़ा हुआ था। फिर शुरू हुआ शपथ ग्रहण समारोह। खास बात यह रही कि पहली बार नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी बिहार सरकार का हिस्सा बन गए। उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली और फिर नीतीश कुमार का पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। कुल 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। जेडीयू से 3 नए चेहरे निशांत कुमार, बुलो मंडल और श्वेता गुप्ता ने शपथ ली। शपथ लेने वालों में बीजेपी से 4 नए चेहरे मिथिलेश तिवारी, रामचंद्र प्रसाद, नंदकिशोर राम और इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने शपथ ली। शपथ लेने वालों में ईबीसी 9, ओबीसी 9, दलित 7, सवर्ण 9 और एक मुस्लिम ने शपथ ली। सम्राट कैबिनेट में कुल 5 महिला मंत्री हैं, जिनमें 3 जेडीयू से हैं। यानी सम्राट सरकार में जातीय समीकरण को तो साधा ही गया है, साथ में महिलाओं को भी नजरअंदाज नहीं किया गया। खास बात ये रही कि बिहार के 2 बार के स्वास्थ्य मंत्री रहे मंगल पांडे को कैबिनेट में जगह नहीं मिली। रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।
7: और अब बात करेंगे तमिलनाडु में सरकार बनने को लेकर फंसे हुए पेच के बारे में, क्योंकि 108 सीटें हासिल करने वाली अभिनेता विजय की पार्टी से राज्यपाल ने बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों का समर्थन दिखाने के लिए कहा है। विजय की पार्टी के पास 113 विधायक हैं, जो बहुमत से 5 कम हैं। तमिलनाडु में विजय की शपथ में हो रही देरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए क्यों नहीं बुलाया जा रहा।

तमिलनाडु की राजनीति में शुरू से फिल्मी सितारों अभिनेत्रियों का बोलबाला रहा, लेकिन इस बार विजय ने जो किया वैसी दबंगई की कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती।

0: विजय की टीवी के पार्टी का पहले ही चुनाव में सबसे ज्यादा 108 सीट जीतना किसी फिल्मी कहानी जैसा ही है, लेकिन विजय की शपथ राज्यपाल की शर्त के आगे ठहर गई। ऐसे में 108 सीटें जीतने वाले टीवीके को कांग्रेस का समर्थन तो मिला, लेकिन बहुमत का जादुई आंकड़ा भी दूर है। सवाल है कि क्या नंबर गेम में विजय का रथ फंस जाएगा। टीवीके की जीत के बाद विजय के समर्थकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो अपने हीरो को मुख्यमंत्री बनते देखने के लिए चेन्नई पहुंच गए, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी।
1: We want to give support for Alunara, Governor. We want to support for Vijayanna. We want to give one chance to Vijayanna for taking Padavi Pramana.
0: Vijay, जहां शपथ ग्रहण स्थल पर परेशान हो रहे थे, तो लोक भवन के भी चक्कर लगाते दिखे। राज्यपाल से उनकी मुलाकात भी हुई, लेकिन बात नहीं बनी। विजय की पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित न करने की वजह ये बताई गई कि वो अब तक विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए पर्याप्त विधायकों का समर्थन नहीं जुटा सके। तमिलनाडु लोकभवन सूत्रों के अनुसार राज्यपाल ने आश्वासन दिया कि वो किसी दूसरी पार्टी को नहीं बुलाएंगे। टीवीके को समर्थन करने वाले विधायकों के दस्तखत समेत संख्या पत्र पेश करने होंगे, उसके बाद विजय शपथ लेंगे। विजय की शपथ में लगे इस ग्रहण पर बड़ी बहस शुरू हो गई। पूछा जा रहा है कि विजय की पार्टी जब सबसे बड़ी है तो फिर उसे सरकार बनाने के लिए क्यों नहीं बुलाया जा रहा? क्या बिना बहुमत दिखाए सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी को नहीं बुलाया जा सकता? सवाल कई हैं, लेकिन विजय की ताजपोशी में हो रही देरी उनके समर्थकों को बेचैन कर रही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, लेकिन किसे बुलाया जाए इसके लिए कोई विशेष उल्लेख करते हुए फॉर्मूला नहीं दिया गया। ये राज्यपाल के स्वविवेक के ऊपर आ जाता है। यही कारण है कि ऐसे मामलों में राज्यपाल की भूमिका खास हो जाती है। संविधान विशेषज्ञों के मुताबिक राज्यपाल का पहला दायित्व ये सुनिश्चित करना होता है कि जिसे भी मुख्यमंत्री बनाया जाए वो सदन में बहुमत साबित कर सके। ये नहीं कि राज्यपाल किसी को आमंत्रित करें और सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद वो अपना बहुमत सिद्ध न कर पाए। तो क्या इसीलिए विजय को इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि उनके लिए समर्थन को लेकर बाकी पार्टियों में बेचैनी बढ़ती जा रही है? तमिलनाडु की AIADMK के 28 विधायकों को पुडुचेरी के पूरन कुप्पम के एक निजी रिजॉर्ट में ठहराया गया है। बताया जा रहा है कि सभी विधायक फिलहाल रिजॉर्ट में मौजूद हैं। हालांकि उन्हें वहां क्यों रखा गया है और पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी इस पर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन माना जा रहा है कि ये वो विधायक हैं जो विजय को समर्थन देने के लिए पार्टी तक छोड़ सकते हैं। विजय की टीवी के जब सरकार बनाने की कोशिशों में जुटी है, इस बीच उसे समर्थन देने को लेकर CPI, CPM और VCK के नेताओं में लगातार मंथन चल रहा है और जो विजय को सरकार बनाने का मौका दिए जाने की वकालत कर रहे हैं। TVK की तरफ से लेफ्ट से समर्थन की औपचारिक चिट्ठी भेज दी गई है। वही स्टालिन की तरफ से भी कहा गया कि DMK 6 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएगी और जनता ने जो बदलाव चुना है उसे मौका दिया जाना चाहिए। स्टालिन के इस बयान के बाद AIADMK के साथ उनकी सरकार बनाने की चर्चा खत्म हो गई। एक्सपर्ट का मानना है कि स्टालिन ऐसा करके विजय को जनता की नजर में और बड़ा होने का मौका नहीं देना चाहते। अगर DMK सरकार बनने से पहले ही जोड़ तोड़ या दबाव की राजनीति करती तो विजय खुद को सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले हीरो के रूप में पेश कर सकते थे, लेकिन अब स्टालिन ने पीछे हटकर विजय से कह दिया कि ठीक है, जनता ने मौका दिया है, अब काम करके दिखाओ। इससे विजय के पास भविष्य में कोई बहाना बनाने का मौका कम रहेगा और उन्हें खुद को साबित करना होगा। स्टालिन के बयान ने राज्यपाल पर भी दबाव बढ़ा दिया, क्योंकि जब सबसे बड़ी पार्टी सरकार बनाना चाहती और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी DMK इसका विरोध नहीं कर रही है तो फिर राज्यपाल के लिए विजय को रोकना मुश्किल हो गया है।
2: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: बंगाल में राज्यपाल ने भंग की विधानसभा, आज बीजेपी विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा नए सीएम का चेहरा, अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के बाद भी नहीं थम रही है बंगाल में हिंसा, हावड़ा के शिवपुर में टीएमसी और बीजेपी में खूनी झड़प, बमबाजी में बीजेपी के दो कार्यकर्ता घायल। बिहार में सम्राट कैबिनेट के विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा, सीएम के पास गृह स्वास्थ्य मंत्री बने निशांत कुमार, विजय सिन्हा को मिला कृषि मंत्रालय। तमिलनाडु में सरकार गठन पर गहराया सस्पेंस, सूत्रों के मुताबिक डीएमके और एआईएडीएमके में गठबंधन की खबरों से नाराज है टीवी के, बड़े पैमाने पर इस्तीफे का विचार कर सकते हैं विधायक। और नासिक टीसीएस धर्मांतरण के मामले में फरार फिदा खान को गिरफ्तार किया गया, छत्रपति संभाजी नगर से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने समेत कई आरोप हैं, 25 दिनों से लापता थी। और अब बात करेंगे बंगाल के खूनी खेल की। 4 मई को बंगाल चुनाव के नतीजों का ऐलान कर दिया गया था, नतीजे आते ही सुरक्षा के तमाम दावों के बावजूद बंगाल में चुनावी हिंसा का पुराना पैटर्न लगातार जारी है। बंगाल की कानून व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती है आज, क्योंकि बीते दिन बंगाल के सीएम के बड़े दावेदार और बीजेपी के सीनियर नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई। 9 मई को शपथ ग्रहण से पहले बेखौफ कातिलों ने बंगाल की शांति पर ग्रहण लगा दिया। अब सवाल यह है कि बंगाल की राजनीति के रक्त चरित्र पर लगाम लगेगा कब? क्या बंगाल में बदलाव नहीं बल्कि बदले की सियासत चलती रहेगी?
1: बंगाल में सबसे सनसनीखेज हत्याकांड, शुभेंदु अधिकारी के पीए की निर्मम हत्या, विदेशी हथियार और किराए के खातिर क्या शार्प शूटरों के निशाने पर थे शुभेंदु? किसने दी सुपारी? कौन है मास्टरमाइंड? दिन बुधवार, वक्त रात के 10:30 बजे, जगह मध्यम ग्राम। रात के अंधेरे में पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। चंद सेकंड में सबसे सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम देकर कातिल मौके वारदात से फरार हो गए, लेकिन पीछे छोड़ गए शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की डेड बॉडी। इस हत्याकांड ने बंगाल में चुनावी हिंसा के काले इतिहास में एक खौफनाक अध्याय जोड़ दिया, क्योंकि चंद्रनाथ हत्याकांड फुल प्रूफ प्लानिंग का हिस्सा है और हत्याकांड की टाइमिंग भी बहुत अहम है। यानी बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के कुछ घंटों के बाद मुख्यमंत्री के सबसे प्रबल दावेदार शुभेंदु के पीए की हत्या।
2: ठीक मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे एक गाड़ी जिसको यहाँ पर इंटरसेप्ट किया गया, इसी गाड़ी के माध्यम से चंद्रनाथ का रास्ता जो है वो रोका गया। लगभग 10 बजे के आसपास जब चंद्रनाथ अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे, तब इस गाड़ी के माध्यम से उनका रास्ता रोककर उनसे आगे का रास्ता यानी कि आसपास किस इलाके में जाने का रास्ता पूछा गया, और जैसे ही चंद्रनाथ की गाड़ी यहाँ पर रुकती है उन पर 10 से 20 ज्यादा राउंड की फायरिंग की जाती है। और अब इस फायरिंग में चंद्रनाथ की हत्या हो चुकी है। उनके साथ जो उनके एक सहयोगी गाड़ी में बैठे हुए थे वो इस वक्त गंभीर रूप से घायल है, और अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो गहनता से की जा रही है।
1: शुरुआती जांच में हत्याकांड की कड़ियां एक गहरी साजिश से जुड़ रही हैं, क्योंकि प्रोफेशनल शार्प शूटरों ने हत्याकांड को अंजाम दिया। फर्जी नंबर प्लेट वाली बाइक और कार का इस्तेमाल, शार्प शूटरों ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से चंद्रनाथ पर फायरिंग की। शार्प शूटरों ने विदेशी ग्लॉक 47X पिस्टल का इस्तेमाल किया। चंद्रनाथ की एक एक मूवमेंट को शार्प शूटर्स ने ट्रैक किया, हूबहू फिल्मी स्टाइल में चंद्रनाथ को मौत के घाट उतारा। चश्मदीदों के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ अपनी सफेद रंग की स्कॉर्पियो से घर के लिए निकले थे। वो कोलकाता से मध्यम ग्राम अपने घर लौट रहे थे, जिसकी दूरी करीब 20 किलोमीटर है। चंद्रनाथ अपने घर से चंद मीटर की दूरी पर थे, तभी स्लेटी रंग की इसी कार ने चंद्रनाथ की स्कॉर्पियो को ओवरटेक करके रास्ता रोका। गाड़ी चला रहा ड्राइवर और चंद्रनाथ कुछ समझते, उससे पहले ही बाइक पर सवार हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कातिलों ने चंद्रनाथ को करीब से गोली मारी ताकि जिंदा बचने का कोई चांस न रहे। यानी कातिल तय करके आए थे कि चंद्रनाथ किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं बचना चाहिए। वारदात को अंजाम देने के बाद कातिल मौके पर कार छोड़कर बाइक से फरार हो गए। बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद जारी हिंसा के बीच शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या से पूरा प्रदेश उबल उठा। आनंद फानन में बंगाल पुलिस ने हत्याकांड की जांच शुरू की। शुरुआती जांच में कातिलों से जुड़ा सुराग पुलिस के हाथ लगा।
3: हम लोगों ने केस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया हुआ है। जो व्हीकल, जो फोर व्हीलर उस क्राइम में इस्तेमाल हुआ था उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है। लेकिन जो पता चल रहा है इन्वेस्टिगेशन में, गाड़ी का नंबर टेम्पर्ड किया हुआ है और हम लोगों ने वहां पर फायर्ड कार्ट्रिजेज और लाइव राउंड जो इस्तेमाल करे गए थे उनको वहां से सीज किया है।
1: चंद्रनाथ हत्याकांड का सच साजिश की कई परतों में लिपटा हुआ है। नंबर एक, चंद्रनाथ हत्याकांड का मकसद क्या है? नंबर दो, प्रोफेशनल शूटरों को किसने सुपारी दी? नंबर तीन, चंद्रनाथ की मौत से किसका फायदा? नंबर चार, क्या शुभेंदु से बदला लेने के लिए मारा? नंबर पाँच, परफेक्ट मर्डर का मास्टरमाइंड कौन है? हत्या से चंद घंटे पहले चंद्रनाथ की अपने दोस्त कासिम अली से फोन पर बात हुई थी। कासिम को चंद्रनाथ ने मिलने के लिए बुलाया था लेकिन किसे पता था मुलाकात से पहले ही चंद्रनाथ को बेमौत मार दिया जाएगा।
4: जो सफलता चंद्रोदय का नेतृत्व में भावलीपुर में चुनाव में मिला है, ममता बनर्जी ये साइन नहीं पाया, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने उसको जान से मार दिया हमारा दादा को।
5: क्या और भी कोई टारगेट पे था?
4: टारगेट तो शुभेंदु दा था।
1: चंद्रनाथ के दोस्त कासिम हत्याकांड के पीछे सियासी एंगल देख रहे हैं तो चंद्रनाथ के घर वालों का आरोप भी यही है।
6: আমি আজকে নতুন সরকার যে গঠন করবে তার কাছে জানাবো যে আমার ছেলের মৃত্যু যেন শাস্তিটুকু হয়। আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন ঘটত।
1: বঙ্গাল পুলিশ কি কই টিমে কাতলো কো সরগর্মি সে তলাশ রহি হ্যায়। কুছ সন্দিগ্ধো কি গিরফতারি ভি হুই হ্যায় লেকিন জাঁচ টিম কা মাথা উস ওয়াক্ত ঠনকা জব হত্যা মে ইস্তেমাল কার অর বাইক পর ফর্জি নম্বর প্লেট কা খুলাসা হুয়া। पुलिस को शक है कि हत्याकांड में एक कार और कम से कम दो बाइक का इस्तेमाल किया गया। कार को कातिल मौके पर छोड़ गए जबकि कार चला रहा हमलावर बाद में बाइक से भागा। मौके से बरामद कार का नंबर है WB74AK2270। नंबर की जांच की गई तो पता चला कि कार सिलीगुड़ी के रहने वाले जेम्स विलियम्स की है और उनकी कार घर में मौजूद थी। यानी हत्या में इस्तेमाल कार का नंबर फर्जी है। जेम्स के मुताबिक चंद दिनों पहले उन्होंने अपनी कार बेचने का पोस्ट एक वेबसाइट पर डाला था। संभव है कातिलों ने उसी पोस्ट के जरिए कार का नंबर हासिल किया। ठीक ऐसे ही हत्या में इस्तेमाल बाइक का नंबर पुलिस के हाथ लगा। बाइक पश्चिम बुर्दवान आरटीओ में विभाष कुमार भट्टाचार्य के नाम पर दर्ज है जिनका पता है क्वार्टर नंबर AB7/12 गुरुद्वारा रोड बर्नपुर हीरापुर वेस्ट बंगाल। नंबर की जांच की गई तो पता चला इस नाम का कोई भी शख्स मौके पर नहीं रहता।
7: सिलीगुड़ी थाना से कमिश्नर ऑफिस से फोन आया, उसके बाद हम लोग यहाँ आया, हमको मिला, हमको थाना में लेके गया, गाड़ी के लिए लेके गया और सारा जो भी उनको इंक्वायरी करना था किया, गाड़ी को चेक किया, चेसिस नंबर वगैरह रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मिलाया, उसके बाद में इंक्वायरी करके फिर
1: सुनियोजित साजिश के तहत चंद्रनाथ की हत्या की गई। हत्या से पहले कातिलों ने रेकी की थी। अब बंगाल पुलिस कातिलों के चेहरे को बेनकाब करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। जांच टीम का कहना है कि कातिलों से जुड़े कुछ सुराग हाथ लगे हैं। बहुत जल्द इस हाई प्रोफाइल और सनसनीखेज हत्याकांड में बड़ा खुलासा होगा। सवाल यही है कि बंगाल की कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले कातिलों का सच क्या है? क्या हत्या के पीछे सियासी एंगल है या फिर वजह कुछ और है? पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और अब आपको दिखाते हैं कि क्यों पश्चिम बंगाल के अंदर चुनावों में राजनीतिक हिंसा भड़कती है, क्यों पश्चिम बंगाल के बारे में कहा जाता है कि हिंसा और राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं। बंगाल की सत्ता पर बैठने वालों के चेहरे और पार्टी का झंडा तो बदलते हैं लेकिन यहां का सियासी रक्त चरित्र नहीं बदलता। आखिर बंगाल में इतनी सियासी हिंसा की वजह है क्या?
1: बंगाल में सत्ता बदल गई, राजनीतिक हिंसा का दौर क्यों नहीं बदला? चुनावी नतीजों के बाद अशांत हुआ बंगाल, हिंसा, हत्याएं, आगजनी। ममता बनर्जी का शासन गया, बंगाल का रक्त चरित्र क्यों नहीं बदला? गोलियों की राजलीला, बंगाल में बदलाव के बाद बदले की आग। कैसे बदलेगा बंगाल का रक्त चरित्र, अब बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती। बंगाल में बीजेपी बदलाव के वादे और नारे के साथ आई, लेकिन ठाक के वही तीन पाप। चुनाव नतीजों के बाद से बंगाल हिंसा की आग में झुलस रहा है। 7 से 8 हत्याएं हो चुकी हैं, 200 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, 450 के आसपास गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 1100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, लेकिन बंगाल शांत नहीं हो रहा है। चुनाव परिणाम आने के बहस 48 घंटों के भीतर बंगाल के कई जिलों में हत्या, गोलीबारी, आगजनी, तोड़फोड़ और राजनीतिक दफ्तरों पर हमलों की घटनाओं ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। कई इलाकों में शव मिलने और पीट पीट कर हत्या करने के मामले दर्ज किए गए हैं। ममता बनर्जी को हराने वाले और बीजेपी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए को गोलियों से भून दिया गया। बशीरहाट दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के गोडाउन पाड़ा इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता रोहित रॉय को गोली मार दी गई। कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में विजय जुलूस के दौरान बुलडोजर से एक दुकान और टीएमसी कार्यालय तोड़े जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लेनिन की मूर्ति भी तोड़ दी गई। हावड़ा, आसनसोल, कस्बा, टॉलीगंज, बीरभूम और दक्षिण 24 परगना समेत कई इलाकों में टीएमसी के कार्यालयों पर हमले हुए। आसनसोल के रानीगंज, बनपुर और बाराबनी क्षेत्रों में टीएमसी कार्यालयों के बोर्ड हटाकर उन्हें भगवा रंग से रंगने की तस्वीरें और वीडियो सामने आए। कोलकाता के बेलिया घाटा इलाके में टीएमसी कार्यकर्ता विश्वजीत पटनायक का शव उनके घर के बाहर मिला। परिवार ने आरोप लगाया कि हमलावर घर का दरवाजा तोड़कर उन्हें बाहर ले गए और पीट पीट कर हत्या कर दी। उत्तर 24 परगना के संदेश खाली और नजत इलाके में उपद्रवियों ने पुलिस और केंद्रीय बलों पर भी गोलीबारी की। इस हमले में थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी और केंद्रीय बलों के जवान घायल हुए। इलाके से बम से भरे बैग भी बरामद किए गए। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी बंगाल में हिंसा फैलाकर डर का माहौल बना रही है। उनका दावा है कि पार्टी के सैकड़ों कार्यालयों और नेताओं के घरों पर हमले हुए हैं। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि हिंसा फैलाने वाले टीएमसी समर्थक हैं, जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के देश में उपद्रव कर रहे हैं। और जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई है, बीजेपी कह रही है कि ये पॉलिटिकल हत्या है जो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने करवाई है।
8: प्री प्लान्ड है, जिसे कोल्ड ब्लडेड प्लान मर्डर। तुरंत अभिलाप पहले ममता बनर्जी को और अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार करिए।
9: राकेश जी,
8: नहीं तो आग लगेगा बंगाल में।
10: पकड़ के इनकाउंटर, जोगी बाबा की तरह इनकाउंटर। अभिषेक बनर्जी का एक अधिकारी, पुलिस अधिकारी है, वो पुलिस अधिकारी इस तरह के अपराधियों को संगठित करता है।
11: जब देखा भवानीपुर में भी इज्जत नहीं बचा। एक कहावत है, तुझको नहीं सजा दे पाऊं, तेरा साथी को तो कम से कम मारे।
12: आप ये सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी किसने ली थी? इलेक्शन कमीशन, देश के होम मिनिस्टर, तो उन्होंने ये कहा था कि हम लाखों सेंट्रल फोर्स भेजी है। सुनने में 3 लाख से ज्यादा।
1: बंगाल की सत्ता में आई और शासन की कमान संभालने जा रही बीजेपी इस वक्त शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या पर भड़क रही है, लेकिन सच ये भी है कि यही बंगाल का रक्त चरित्र है। और चुनौती 207 सीटें जीतने वाली बीजेपी के लिए है, जो बंगाल में बदलाव के नारे के साथ आई है।
9: पहले काम किया मुर्शिदाबाद में, लेनिन का स्टैचू को भी तोड़ दिया, वो सब पहले टीएमसी, अभी सब बीजेपी बन गए। तो बीजेपी और टीएमसी के बीच में जो जनवाद का एक फुटबॉल बना रहा है, आज वो वायलेंस है जो टीएमसी ने लेफ्ट के खिलाफ किया। लेफ्ट के हर दफ्तर को टीएमसी तोड़ा, आज बीजेपी वही हथियार इस्तेमाल करके टीएमसी को कर रही है। हम इसका निंदा करते हैं।
0: बंगाल चुनाव के बाद अब यूपी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। यूपी में अगले साल चुनाव हैं, जिसे लेकर योगी आदित्यनाथ से लेकर अखिलेश यादव ने अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया है। बंगाल में जिस तरह 30% अल्पसंख्यक वोट के बावजूद बीजेपी जीती है, अब ऐसा ही प्रयोग वो यूपी में लागू करने जा रहे हैं। सवाल अब यह कि क्या बंगाल चुनाव ने यूपी के नतीजे तय कर दिए हैं?
13: अब वही सहारनपुर अपनी गति के लिए, अपनी प्रगति के लिए जाना जा रहा है, जिस सहारनपुर की पहले लोगों ने फतवे जारी कर करके दुर्गति कर रखी थी।
14: पश्चिम बंगाल में जीत से बीजेपी के हौसले उत्तर प्रदेश में और भी बुलंद हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ ने 22 सीटों पर प्रचार किया और 19 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। इस तरह पश्चिम बंगाल के चुनाव में योगी का स्ट्राइक रेट 90% रहा, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने 2027 के लिए मुद्दों की लाइन खींच दी।
13: देश के साथ धोखा देने वाले, भारत की संस्कृति के साथ धोखा देने वाले, भारत के राष्ट्रवाद को नुकसान पहुंचाने वाले राजनीतिक दलों को दफन करने में भी बहुत देर नहीं लगाएगी। चुनाव परिणामों ने इस बात का स्पष्ट संकेत किया है।
14: पश्चिम बंगाल के बाद बीजेपी ने जीत के लिए कमर कसी है, वहीं अखिलेश भी मैदान में उतर गए हैं। योगी आदित्यनाथ सहारनपुर के देवबंद पहुंचे, अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता गए। इस मुलाकात में अभिषेक बनर्जी भी वहां मौजूद रहे, जिन्होंने अखिलेश का स्वागत गले मिलकर किया। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से कहा, दीदी आप हारी नहीं है।
15: आप हारे नहीं है।
14: 2027 की चुनावी जंग योगी और अखिलेश के बीच सीधी होनी है। जो जितने दमदार तरीके से अपनी बात जनता तक पहुंचाएगा, जीत उसी की होगी। इसीलिए दोनों अपनी रणनीति पर चलना शुरू हो चुके हैं। बंगाल में स्टार प्रचारक रहे योगी आदित्यनाथ अपने राज्य में जनता को बंगाल चुनाव की तरह जाति से ऊपर उठकर वोट डालने को मनाने में जुटे हैं।
13: विकास में बाधक जो तत्व हैं, वे जाति के नाम पर बिखराव लाने का प्रयास करेंगे।

0: देशी और व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले तत्व अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए जाति का सहारा लेते हैं। इनके द्वारा जब भारत की परंपरागत सनातन संस्कृति पर प्रहार होता है, इनके मुंह में फेविकोल लग जाता है।
1: बटोगे तो कटोगे का नारा देकर बीजेपी को चुनावी मजबूती देते आए योगी की अब अपने घर में परीक्षा है, इसीलिए वो विकास योजनाओं की सौगात के साथ बंगाल की तरह मुद्दों को सेट करना चाहते हैं।
0: और ये नहीं चल सकता है कि रहेंगे खाएंगे भारत में, रहेंगे भारत में और दुश्मन के गीत गाएंगे, ये नहीं चल सकता है, यह देश इसको स्वीकार नहीं करेगा।
1: योगी अगर बटोगे तो कटोगे की लाइन को बढ़ाकर हिंदू वोट को एकजुट करके जाति की चुनौती को धुंधला करके अखिलेश यादव के पीडीए वाले वार को कमजोर करना चाहते हैं, तो अखिलेश यादव ने कोलकाता में ममता बनर्जी से मिलकर साफ कर दिया कि चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाना जारी रहेगा।
2: ये मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया की तरह काम हुआ है, जिसमें जितनी भी संस्थाएं थी जिनका काम यह है कि निष्पक्ष चुनाव हो, उन तमाम संस्थाओं ने अपना क्रेडिबिलिटी खो दी।
1: अखिलेश यादव का कोलकाता जाकर ममता से यह कहना कि आप हारी नहीं है, अभिषेक को यह कहकर हौसला बढ़ाना कि कोई नहीं तुम अच्छा लड़े, साफ संदेश देता है कि विपक्ष हार के बावजूद एक साथ खड़ा रहेगा।
2: भारतीय जनता पार्टी ने जो जो बंगाल में किया है, उत्तर प्रदेश में उससे कम किया उन्होंने, लेकिन ट्रायल वहीं पर किया। हालांकि बंगाल में इससे भी खतरनाक तस्वीरें आई होंगी जो मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूं आपको। ये तस्वीर वो है जब उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हुआ था, फोर्सेस को लगा करके लोगों को वोट रोका गया।
1: तो बंगाल में हार के बाद विपक्ष नए सिरे से एकजुट हो रहा है, वोट चोरी की बात नई ताकत से कही जा रही है ताकि 2027 के चुनाव को 2024 की तरह अपनी तरफ पलटा जा सके। लेकिन बंगाल चुनाव जीतकर उत्साह से भरी बीजेपी भी इस बार पहले से कई गुना ज्यादा शक्ति से विपक्ष को चुनौती देने को तैयार है।
3: बिहार में आज सम्राट चौधरी की सरकार का विस्तार हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 32 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण की खास बात यह रही कि पहली बार नीतीश कुमार के बेटे निशांत मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। शपथ ग्रहण के बाद मंत्रियों में बीजेपी के 15 मंत्री, जेडीयू के 13 और एलजेपीआर के 2, आरएलएम के और हम के एक एक मंत्री ने शपथ ली।
4: बिहार को इस वक्त का बेसब्री से इंतजार था। पटना के गांधी मैदान में कैबिनेट विस्तार का मंच सजा था। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के सीएम के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम समेत दिग्गजों का जमावड़ा था। पीएम मोदी मंच पर पहुंचे तो जोरदार स्वागत हुआ। नीतीश कुमार से भी पीएम गर्मजोशी से मिले। नीतीश कुमार ने पीएम का कंधा पकड़ा हुआ था। फिर शुरू हुआ शपथ ग्रहण समारोह। खास बात ये रही कि पहली बार नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी बिहार सरकार का हिस्सा बन गए। उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली और फिर नीतीश कुमार का पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। कुल 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। जेडीयू से 3 नए चेहरे, निशांत कुमार, बुलो मंडल और श्वेता गुप्ता ने शपथ ली। शपथ लेने वालों में बीजेपी से 4 नए चेहरे, मिथिलेश तिवारी, रामचंद्र प्रसाद, नंदकिशोर राम और इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने शपथ ली। शपथ लेने वालों में ईबीसी 9, ओबीसी 9, दलित 7, सवर्ण 9 और एक मुस्लिम ने शपथ ली। सम्राट कैबिनेट में कुल 5 महिला मंत्री हैं, जिनमें 3 जेडीयू से हैं। यानी सम्राट सरकार में जातीय समीकरण को तो साधा ही गया है, साथ में महिलाओं को भी नजरअंदाज नहीं किया गया। खास बात ये रही कि बिहार के 2 बार के स्वास्थ्य मंत्री रहे मंगल पांडे को कैबिनेट में जगह नहीं मिली। रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक।
3: और अब बात करेंगे तमिलनाडु में सरकार बनने को लेकर फंसे हुए पेच के बारे में, क्योंकि 108 सीटें हासिल करने वाली अभिनेता विजय की पार्टी से राज्यपाल ने बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों का समर्थन

दिखाने के लिए कहा है। विजय की पार्टी के पास 113 विधायक हैं, जो बहुमत से 5 कम हैं। तमिलनाडु में विजय की शपथ में हो रही देरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए क्यों नहीं बुलाया जा रहा।

तमिलनाडु की राजनीति में शुरू से फिल्मी सितारों अभिनेत्रियों का बोलबाला रहा, लेकिन इस बार विजय ने जो किया वैसी दबंगई की कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती।

0: विजय की टीवी के पार्टी का पहले ही चुनाव में सबसे ज्यादा 108 सीट जीतना किसी फिल्मी कहानी जैसा ही है, लेकिन विजय की शपथ राज्यपाल की शर्त के आगे ठहर गई। ऐसे में 108 सीटें जीतने वाले टीवीके को कांग्रेस का समर्थन तो मिला, लेकिन बहुमत का जादुई आंकड़ा भी दूर है। सवाल है कि क्या नंबर गेम में विजय का रथ फंस जाएगा। टीवीके की जीत के बाद विजय के समर्थकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो अपने हीरो को मुख्यमंत्री बनते देखने के लिए चेन्नई पहुंच गए, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी।
1: We want to give support for Alunar, Governor. We want to support for Vijayanna. We want to give one chance to Vijayanna for taking Padavi Pramana.
0: Vijay, जहां शपथ ग्रहण स्थल पर परेशान हो रहे थे, तो लोक भवन के भी चक्कर लगाते दिखे। राज्यपाल से उनकी मुलाकात भी हुई, लेकिन बात नहीं बनी। विजय की पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित न करने की वजह ये बताई गई कि वो अब तक विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए पर्याप्त विधायकों का समर्थन नहीं जुटा सके। तमिलनाडु लोकभवन सूत्रों के अनुसार राज्यपाल ने आश्वासन दिया कि वो किसी दूसरी पार्टी को नहीं बुलाएंगे। टीवीके को समर्थन करने वाले विधायकों के दस्तखत समेत संख्या पत्र पेश करने होंगे, उसके बाद विजय शपथ लेंगे। विजय की शपथ में लगे इस ग्रहण पर बड़ी बहस शुरू हो गई। पूछा जा रहा है कि विजय की पार्टी जब सबसे बड़ी है, तो फिर उसे सरकार बनाने के लिए क्यों नहीं बुलाया जा रहा? क्या बिना बहुमत दिखाए सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी को नहीं बुलाया जा सकता? सवाल कई हैं, लेकिन विजय की ताजपोशी में हो रही देरी उनके समर्थकों को बेचैन कर रही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, लेकिन किसे बुलाया जाए इसके लिए कोई विशेष उल्लेख करते हुए फॉर्मूला नहीं दिया गया। ये राज्यपाल के स्वविवेक के ऊपर आ जाता है। यही कारण है कि ऐसे मामलों में राज्यपाल की भूमिका खास हो जाती है। संविधान विशेषज्ञों के मुताबिक राज्यपाल का पहला दायित्व ये सुनिश्चित करना होता है कि जिसे भी मुख्यमंत्री बनाया जाए वो सदन में बहुमत साबित कर सके। ये नहीं कि राज्यपाल किसी को आमंत्रित करें और सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद वो अपना बहुमत सिद्ध न कर पाए। तो क्या इसीलिए विजय को इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि उनके लिए समर्थन को लेकर बाकी पार्टियों में बेचैनी बढ़ती जा रही है? तमिलनाडु की AIADMK के 28 विधायकों को पुडुचेरी के पूरन कुप्पम के एक निजी रिजॉर्ट में ठहराया गया है। बताया जा रहा है कि सभी विधायक फिलहाल रिजॉर्ट में मौजूद हैं। हालांकि उन्हें वहां क्यों रखा गया है और पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन माना जा रहा है कि ये वो विधायक हैं जो विजय को समर्थन देने के लिए पार्टी तक छोड़ सकते हैं। विजय की टीवी के जब सरकार बनाने की कोशिशों में जुटी है, इस बीच उसे समर्थन देने को लेकर CPI, CPM और VCK के नेताओं में लगातार मंथन चल रहा है और जो विजय को सरकार बनाने का मौका दिए जाने की वकालत कर रहे हैं। टीवीके की तरफ से लेफ्ट से समर्थन की औपचारिक चिट्ठी भेज दी गई है। वही स्टालिन की तरफ से भी कहा गया कि DMK 6 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएगी और जनता ने जो बदलाव चुना है उसे मौका दिया जाना चाहिए। स्टालिन के इस बयान के बाद AIADMK के साथ उनकी सरकार बनाने की चर्चा खत्म हो गई। एक्सपर्ट का मानना है कि स्टालिन ऐसा करके विजय को जनता की नजर में और बड़ा होने का मौका नहीं देना चाहते। अगर DMK सरकार बनने से पहले ही जोड़ तोड़ या दबाव की राजनीति करती तो विजय खुद को सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले हीरो के रूप में पेश कर सकते थे, लेकिन अब स्टालिन ने पीछे हटकर विजय से कह दिया कि ठीक है, जनता ने मौका दिया है, अब काम करके दिखाओ। इससे विजय के पास भविष्य में कोई बहाना बनाने का मौका कम रहेगा और उन्हें खुद को साबित करना होगा। स्टालिन के बयान ने राज्यपाल पर भी दबाव बढ़ा दिया, क्योंकि जब सबसे बड़ी पार्टी सरकार बनाना चाहती और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी DMK इसका विरोध नहीं कर रही है, तो फिर राज्यपाल के लिए विजय को रोकना मुश्किल हो गया है।
2: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
6: आज तक ला रहा है आपके लिए वीडियो वाला पेपर, हर रोज सुबह आपके मोबाइल पर, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर epaper.aajtak.in टाइप करें या फिर स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें।
0: पश्चिम बंगाल में ममता राज के खात्मे और बीजेपी राज के आगाज के बीच 120 घंटे मां माटी मानुष पर बड़े भारी पड़ रहे हैं। चुनाव नतीजों के बाद से शुरू हुई हिंसा अब एक बड़ी वारदात की शक्ल में सामने आई, जब बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता और संभावित मुख्यमंत्री उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के पीए 42 साल के चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
7: अरे मुखटा देखते हैं तो
8: अभी हॉस्पिटल जाना गए
0: चंद्रनाथ रात 10 बजे के बाद मध्यम ग्राम में अपने घर लौट रहे थे। डुलतला और चौमाथा के बीच कार सवारों ने उनको रोक कर रास्ता पूछा। एक बाइक सवार ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी।
9: थोड़ा सा हाइट ज्यादा हो गया लेकिन पतला सा था।
0: वहाँ करीब 10 राउंड फायरिंग की खबर है। 5 गोलियां चंद्रनाथ रथ को लगी। ड्राइवर बुद्धदेव बेरा को भी गोली लगी है। जब लोग पहुंचे, कार के अंदर चंद्रनाथ के साथ एक और शख्स था। चीखने रोने की आवाज आ रही थी। चंद्रनाथ को आगे की ही सीट पर बैठाकर लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया।
10: स्कॉर्पियो के अंदर 3 आदमी, एक आदमी रो रहा था और डर के मारे दर्जा नहीं खुल रहा था कार का। आदमी पड़ा था और एक आदमी रो रहा था। हमने तुरंत बोला जाए, ये जब अभी जिंदा है तो जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ, हम पुलिस बुला रहे हैं।
0: अस्पताल में रात को ही सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई। बीजेपी समर्थकों में नाराजगी, गुस्सा, आक्रोश नजर आया। सुबह जब पोस्टमार्टम हुआ

0: बंगाल में राज्यपाल ने भंग की विधानसभा, आज बीजेपी विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा नए सीएम का चेहरा, अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के बाद भी नहीं थम रही है बंगाल में हिंसा, हावड़ा के शिवपुर में टीएमसी और बीजेपी में खूनी झड़प, बमबाजी में बीजेपी के दो कार्यकर्ता घायल। बिहार में सम्राट कैबिनेट के विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा, सीएम के पास गृह स्वास्थ्य मंत्री बने निशांत कुमार, विजय सिन्हा को मिला कृषि मंत्रालय। तमिलनाडु में सरकार गठन पर गहराया सस्पेंस, सूत्रों के मुताबिक डीएमके और एआईएडीएमके में गठबंधन की खबरों से नाराज है टीवी के, बड़े पैमाने पर इस्तीफे का विचार कर सकते हैं विधायक। और नासिक टीसीएस धर्मांतरण के मामले में फरार फिदा खान को गिरफ्तार किया गया छत्रपति संभाजी नगर से, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने समेत कई आरोप हैं, 25 दिनों से लापता थी। और अब बात करेंगे बंगाल के खूनी खेल की। 4 मई को बंगाल चुनाव के नतीजों का ऐलान कर दिया गया था, नतीजे आते ही सुरक्षा के तमाम दावों के बावजूद बंगाल में चुनावी हिंसा का पुराना पैटर्न लगातार जारी है। बंगाल की कानून व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती है आज, क्योंकि बीते दिन बंगाल के सीएम के बड़े दावेदार और बीजेपी के सीनियर नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई। 9 मई को शपथ ग्रहण से पहले बेखौफ कातिलों ने बंगाल की शांति पर ग्रहण लगा दिया। अब सवाल यह है कि बंगाल की राजनीति के रक्त चरित्र पर लगाम लगेगा कब? क्या बंगाल में बदलाव नहीं बल्कि बदले की सियासत चलती रहेगी?
1: बंगाल में सबसे सनसनीखेज हत्याकांड, शुभेंदु अधिकारी के पीए की निर्मम हत्या, विदेशी हथियार और किराए के खातिर क्या शार्प शूटरों के निशाने पर थे शुभेंदु? किसने दी सुपारी? कौन है मास्टरमाइंड? दिन बुधवार, वक्त रात के 10:30 बजे, जगह मध्यम ग्राम। रात के अंधेरे में पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। चंद सेकंड में सबसे सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम देकर कातिल मौके वारदात से फरार हो गए, लेकिन पीछे छोड़ गए शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की डेड बॉडी। इस हत्याकांड ने बंगाल में चुनावी हिंसा के काले इतिहास में एक खौफनाक अध्याय जोड़ दिया, क्योंकि चंद्रनाथ हत्याकांड फुल प्रूफ प्लानिंग का हिस्सा है और हत्याकांड की टाइमिंग भी बहुत अहम है। यानी बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के कुछ घंटों के बाद मुख्यमंत्री के सबसे प्रबल दावेदार शुभेंदु के पीए की हत्या।
2: ठीक मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे एक गाड़ी जिसको यहाँ पर इंटरसेप्ट किया गया, इसी गाड़ी के माध्यम से चंद्रनाथ का रास्ता जो है वो रोका गया। लगभग 10 बजे के आसपास जब चंद्रनाथ अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे, तब इस गाड़ी के माध्यम से उनका रास्ता रोककर उनसे आगे का रास्ता यानी कि आसपास किस इलाके में जाने का रास्ता पूछा गया, और जैसे ही चंद्रनाथ की गाड़ी यहाँ पर रुकती है उन पर 10 से 20 ज्यादा राउंड की फायरिंग की जाती है। और अब इस फायरिंग में चंद्रनाथ की हत्या हो चुकी है, उनके साथ से उनके एक सहयोगी गाड़ी में बैठे हुए थे वो इस वक्त गंभीर रूप से घायल है, और अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो गहनता से की जा रही है।
1: शुरुआती जांच में हत्याकांड की कड़ियां एक गहरी साजिश से जुड़ रही हैं, क्योंकि प्रोफेशनल शार्प शूटरों ने हत्याकांड को अंजाम दिया। फर्जी नंबर प्लेट वाली बाइक और कार का इस्तेमाल, शार्प शूटरों ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से चंद्रनाथ पर फायरिंग की, शार्प शूटरों ने विदेशी ग्लॉक 47X पिस्टल का इस्तेमाल किया, चंद्रनाथ की एक एक मूवमेंट को शार्प शूटर्स ने ट्रैक किया, हूबहू फिल्मी स्टाइल में चंद्रनाथ को मौत के घाट उतारा। चश्मदीदों के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ अपनी सफेद रंग की स्कॉर्पियो से घर के लिए निकले थे, वो कोलकाता से मध्यम ग्राम अपने घर लौट रहे थे जिसकी दूरी करीब 20 किलोमीटर है। चंद्रनाथ अपने घर से चंद मीटर की दूरी पर थे, तभी स्लेटी रंग की इसी कार ने चंद्रनाथ की स्कॉर्पियो को ओवरटेक करके रास्ता रोका। गाड़ी चला रहा ड्राइवर और चंद्रनाथ कुछ समझते उससे पहले ही बाइक पर सवार हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कातिलों ने चंद्रनाथ को करीब से गोली मारी ताकि जिंदा बचने का कोई चांस न रहे। यानी कातिल तय करके आए थे कि चंद्रनाथ किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं बचना चाहिए। वारदात को अंजाम देने के बाद कातिल मौके पर कार छोड़कर बाइक से फरार हो गए। बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद जारी हिंसा के बीच शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या से पूरा प्रदेश उबल उठा। आनन फानन में बंगाल पुलिस ने हत्याकांड की जांच शुरू की। शुरुआती जांच में कातिलों से जुड़ा सुराग पुलिस के हाथ लगा।
3: हम लोगों ने केस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया हुआ है। जो व्हीकल, जो फोर व्हीलर उस क्राइम में इस्तेमाल हुआ था उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है। लेकिन जो पता चल रहा है इन्वेस्टिगेशन में, गाड़ी का नंबर टेम्पर्ड किया हुआ है और हम लोगों ने वहां पर फायर्ड कार्टेजेस और लाइव राउंड जो इस्तेमाल करे गए थे उनको वहां से सीज किया है।
1: चंद्रनाथ हत्याकांड का सच साजिश की कई परतों में लिपटा हुआ है। नंबर एक, चंद्रनाथ हत्याकांड का मकसद क्या है? नंबर दो, प्रोफेशनल शूटरों को किसने सुपारी दी? नंबर तीन, चंद्रनाथ की मौत से किसका फायदा? नंबर चार, क्या शुभेंदु से बदला लेने के लिए मारा? नंबर पाँच, परफेक्ट मर्डर का मास्टरमाइंड कौन है? हत्या से चंद घंटे पहले चंद्रनाथ की अपने दोस्त कासिम अली से फोन पर बात हुई थी। कासिम को चंद्रनाथ ने मिलने के लिए बुलाया था लेकिन किसे पता था मुलाकात से पहले ही चंद्रनाथ को बेबाक मार दिया जाएगा।
4: जो सफलता चंदोदा का नेतृत्व में भावनीपुर में चुनाव में मिला है, ममता बनर्जी साइन नहीं पाया, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने उसको जान से मार दिया, जान से।
0: और अब आपको दिखाते हैं कि क्यों पश्चिम बंगाल के अंदर चुनावों में राजनीतिक हिंसा भड़कती है, क्यों पश्चिम बंगाल के बारे में कहा जाता है कि हिंसा और राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं। बंगाल की सत्ता पर बैठने वालों के चेहरे और पार्टी का झंडा तो बदलते हैं लेकिन यहाँ का सियासी रक्त चरित्र नहीं बदलता। आखिर बंगाल में इतनी सियासी हिंसा की वजह है क्या?
1: बंगाल में सत्ता बदल गई, राजनीतिक हिंसा का दौर क्यों नहीं बदला? चुनावी नतीजों के बाद अशांत हुआ बंगाल, हिंसा, हत्याएं, आगजनी। ममता बनर्जी का शासन गया, बंगाल का रक्त चरित्र क्यों नहीं बदला? गोलियों की राजलीला, बंगाल में बदलाव के बाद बदले की आग। कैसे बदलेगा बंगाल का रक्त चरित्र? अब बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती। बंगाल में बीजेपी बदलाव के वादे और नारे के साथ आए लेकिन ठाक के वही तीन पाप। चुनाव नतीजों के बाद से बंगाल हिंसा की आग में झुलस रहा है। 7 से 8 हत्याएं हो चुकी हैं, 200 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, 450 के आसपास गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 1100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है लेकिन बंगाल शांत नहीं हो रहा है। चुनाव परिणाम आने के महज 48 घंटों के भीतर बंगाल के कई जिलों में हत्या, गोलीबारी, आगजनी, तोड़फोड़ और राजनीतिक दफ्तरों पर हमलों की घटनाओं ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। कई इलाकों में शव मिलने और पीट पीट कर हत्या करने के मामले दर्ज किए गए हैं। ममता बनर्जी को हराने वाले और बीजेपी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए को गोलियों से भून दिया गया। बशीरहाट दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के गोडाउन पाड़ा इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता रोहित रॉय को गोली मार दी गई। कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में विजय जुलूस के दौरान बुलडोजर से एक दुकान और टीएमसी कार्यालय तोड़े जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लेनिन की मूर्ति भी तोड़ दी गई। हावड़ा, आसनसोल, कस्बा, टॉलीगंज, बीरभूम और दक्षिण 24 परगना समेत कई इलाकों में टीएमसी के कार्यालयों पर हमले हुए। आसनसोल के रानीगंज, बनपुर और बाराबनी क्षेत्रों में टीएमसी कार्यालयों के बोर्ड हटाकर उन्हें भगवा रंग से रंगने की तस्वीरें और वीडियो सामने आए। कोलकाता के बेलिया घाटा इलाके में टीएमसी कार्यकर्ता विश्वजीत पटनायक का शव उनके घर के बाहर मिला। परिवार ने आरोप लगाया कि हमलावर घर का दरवाजा तोड़कर उन्हें बाहर ले गए और पीट पीट कर हत्या कर दी। उत्तर 24 परगना के संदेश खाली और नजत इलाके में उपद्रवियों ने पुलिस और केंद्रीय बलों पर भी गोलीबारी की। इस हमले में थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी और केंद्रीय बलों के जवान घायल हुए। इलाके से बम से भरे बैग भी बरामद किए गए। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी बंगाल में हिंसा फैलाकर डर का माहौल बना रही है। उनका दावा है कि पार्टी के सैकड़ों कार्यालयों और नेताओं के घरों पर हमले हुए हैं। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि हिंसा फैलाने वाले टीएमसी समर्थक हैं, जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के वेश में उपद्रव कर रहे हैं। और जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई है, बीजेपी कह रही है कि ये पॉलिटिकल हत्या है जो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने करवाई है।
5: प्री प्लान्ड है, जिसे कोल्ड ब्लडेड प्लान मर्डर। तुरंत अभिलाप पहले ममता बनर्जी को और अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार करिए।
6: राकेश
5: जी, तो आग लगेगा बंगाल में।
7: पकड़ के इनकाउंटर, जोगी बाबा की तरह इनकाउंटर। अभिषेक बनर्जी का एक अधिकारी, पुलिस अधिकारी है, वो पुलिस अधिकारी इस तरह के अपराधियों को संगठित करता है।
8: जब देखा भवानीपुर में भी इज्जत नहीं बचा। एक कहावत है, तुझको नहीं सजा दे पाऊं, तेरा साथी को तो कम से कम मारे।
9: आप ये सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी किसने ली थी? इलेक्शन कमीशन, देश के होम मिनिस्टर। तो उन्होंने ये कहा था कि हम लाखों सेंट्रल फोर्स भेजी है, सुनने में आया 3 लाख से ज्यादा।
1: बंगाल की सत्ता में आई और शासन की कमान संभालने जा रही बीजेपी इस वक्त शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या पर भड़क रही है। लेकिन सच ये भी है कि यही बंगाल का रक्त चरित्र है। और चुनौती 207 सीटें जीतने वाली बीजेपी के लिए है, जो बंगाल में बदलाव के नारे के साथ आई है।
10: पहले काम किया मुर्शिदाबाद में, लेनिन का स्टैचू को भी तोड़ दिया। वो सब पहले टीएमसी, अभी सब बीजेपी बन गए। तो बीजेपी और टीएमसी के बीच में जो जनवाद का एक फुटबॉल बना रहा है, आज वो वायलेंस है जो टीएमसी ने लेफ्ट के खिलाफ किया। लेफ्ट के हर दफ्तर को टीएमसी तोड़ा, आज बीजेपी वही हथियार इस्तेमाल करके टीएमसी को कर रही है। हम इसका निंदा करते हैं।
0: बंगाल चुनाव के बाद अब यूपी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। यूपी में अगले साल चुनाव हैं, जिसे लेकर योगी आदित्यनाथ से लेकर अखिलेश यादव ने अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया है। बंगाल में जिस तरह 30% अल्पसंख्यक वोट के बावजूद बीजेपी जीती है, अब ऐसा ही प्रयोग वो यूपी में लागू करने जा रही है। सवाल अब यह है कि क्या बंगाल चुनाव ने यूपी के नतीजे तय कर दिए हैं?
11: अब वही सहारनपुर अपनी गति के लिए, अपनी प्रगति के लिए जाना जा रहा है, जिस सहारनपुर की पहले लोगों ने फतवे जारी कर करके दुर्गति कर रखी थी।
12: पश्चिम बंगाल में जीत से बीजेपी के हौसले उत्तर प्रदेश में और भी बुलंद हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ ने 22 सीटों पर प्रचार किया और 19 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। इस तरह पश्चिम बंगाल के चुनाव में योगी का स्ट्राइक रेट 90% रहा, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने 2027 के लिए मुद्दों की लाइन खींच दी।
11: देश के साथ धोखा देने वाले, भारत की संस्कृति के साथ धोखा देने वाले, भारत के राष्ट्रवाद को नुकसान पहुंचाने वाले राजनीतिक दलों को दफन करने में भी बहुत देर नहीं लगाएगी। चुनाव परिणामों ने इस बात का स्पष्ट संकेत किया है।
12: पश्चिम बंगाल के बाद बीजेपी ने जीत के लिए कमर कसी है, वहीं अखिलेश भी मैदान में उतर गए हैं। योगी आदित्यनाथ सहारनपुर के देवबंद पहुंचे, अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता गए। इस मुलाकात में अभिषेक बनर्जी भी वहां मौजूद रहे, जिन्होंने अखिलेश का स्वागत गले मिलकर किया। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से कहा, दीदी आप हारी नहीं है।
9: आप हारे नहीं है।
12: 2027 की चुनावी जंग योगी और अखिलेश के बीच सीधी होनी है। जो जितने दमदार तरीके से अपनी बात जनता तक पहुंचाएगा, जीत उसी की होगी। इसीलिए दोनों अपनी रणनीति पर चलना शुरू हो चुके हैं। बंगाल में स्टार प्रचारक रहे योगी आदित्यनाथ अपने राज्य में जनता को बंगाल चुनाव की तरह जाति से ऊपर उठकर वोट डालने को मनाने में जुटे हैं।
11: विकास में बाधक जो तत्व हैं वे जाति के नाम पर बिखराव लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन बटना नहीं है, विभाजित नहीं होना है। इस तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, फतवे की संस्कृति पर विश्वास करने वाले, गुंडों को प्रश्रय देने वाले, बहन और बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले तत्व अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए जाति का सहारा लेते हैं। इनके द्वारा जब भारत की परंपरागत सनातन संस्कृति पर प्रहार होता है, इनके मुंह में फेविकोल लग जाता है।
12: बटोगे तो कटोगे का नारा देकर बीजेपी को चुनावी मजबूती देते आए योगी की अब अपने घर में परीक्षा है। इसीलिए वो विकास योजनाओं की सौगात के साथ बंगाल की तरह मुद्दों को सेट करना चाहते हैं।
11: और ये नहीं चल सकता है कि रहेंगे खाएंगे भारत में, रहेंगे भारत में और दुश्मन के गीत गाएंगे, ये नहीं चल सकता है। यह देश इसको स्वीकार नहीं करेगा।
12: योगी अगर बटोगे तो कटोगे की लाइन को बढ़ाकर हिंदू वोट को एकजुट करके जाति की चुनौती को धुंधला करके अखिलेश यादव के पीडीए वाले वार को कमजोर करना चाहते हैं, तो अखिलेश यादव ने कोलकाता में ममता बनर्जी से मिलकर साफ कर दिया कि चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाना जारी रहेगा।
6: ये मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया की तरह काम हुआ है, जिसमें जितनी भी संस्थाएं थी जिनका काम यह है कि निष्पक्ष चुनाव हो, उन तमाम संस्थाओं ने अपना क्रेडिबिलिटी खो दी।
12: अखिलेश यादव का कोलकाता जाकर ममता से ये कहना कि आप हारी नहीं है, अभिषेक को ये कहकर हौसला बढ़ाना कि कोई नहीं तुम अच्छा लड़े, साफ संदेश देता है कि विपक्ष हार के बावजूद एक साथ खड़ा रहेगा।
6: भारतीय जनता पार्टी ने जो जो बंगाल में किया है, उत्तर प्रदेश में उससे कम किया उन्होंने, लेकिन ट्रायल वहीं पर किया। हालांकि बंगाल में इससे भी खतरनाक तस्वीरें आई होंगी, जो मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूं आपको। ये तस्वीर वो है जब उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हुआ था, फोर्सेस को लगा करके लोगों को वोट रोका गया।
12: तो बंगाल में हार के बाद विपक्ष नए सिरे से एकजुट हो रहा है, वोट चोरी की बात नई ताकत से कही जा रही है ताकि 2027 के चुनाव को 2024 की तरह अपनी तरफ पलटा जा सके। लेकिन बंगाल चुनाव जीतकर उत्साह से भरी बीजेपी भी इस बार पहले से कई गुना ज्यादा शक्ति से विपक्ष को चुनौती देने को तैयार है।
0: बिहार में आज सम्राट चौधरी की सरकार का विस्तार हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 32 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण की खास बात यह रही कि पहली बार नीतीश कुमार के बेटे निशांत मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। शपथ ग्रहण के बाद मंत्रियों में बीजेपी के 15 मंत्री, जेडीयू के 13 और एलजेपीआर के 2, आरएलएम के और हम के एक एक मंत्री ने शपथ ली।
13: बिहार को इस वक्त का बेसब्री से इंतजार। पटना के गांधी मैदान में कैबिनेट विस्तार का मंच सजा था। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के सीएम के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम समेत दिग्गजों का जमावड़ा था। पीएम मोदी मंच पर पहुंचे तो जोरदार स्वागत हुआ। नीतीश कुमार से भी पीएम गर्मजोशी से मिले। नीतीश कुमार ने पीएम का कंधा पकड़ा हुआ था। फिर शुरू हुआ शपथ ग्रहण समारोह। खास बात यह रही कि पहली बार नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी बिहार सरकार का हिस्सा बन गए। उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली और फिर नीतीश कुमार का पैर छूकर आशीर्वाद दे लिया। कुल 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। जेडीयू से 3 नए चेहरे निशांत कुमार, बुलो मंडल और श्वेता गुप्ता ने शपथ ली। शपथ लेने वालों में बीजेपी से 4 नए चेहरे मिथिलेश तिवारी, रामचंद्र प्रसाद, नंद किशोर राम और इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने शपथ ली। शपथ लेने वालों में ईबीसी 9, ओबीसी 9, दलित 7, सवर्ण 9 और एक मुस्लिम ने शपथ ली। सम्राट कैबिनेट में कुल 5 महिला मंत्री हैं, जिनमें 3 जेडीयू से हैं। यानी सम्राट सरकार में जातीय समीकरण को तो साधा ही गया है, साथ में महिलाओं को भी नजरअंदाज नहीं किया गया। खास बात ये रही कि बिहार के 2 बार के स्वास्थ्य मंत्री रहे मंगल पांडे को कैबिनेट में जगह नहीं मिली। रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।
0: और अब बात करेंगे तमिलनाडु में सरकार बनने को लेकर फंसे हुए पेच के बारे में, क्योंकि 108 सीटें हासिल करने वाली अभिनेता विजय की पार्टी से राज्यपाल ने बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों का समर्थन दिखाने के लिए कहा है। विजय की पार्टी के पास 113 विधायक हैं, जो बहुमत से 5 कम हैं। तमिलनाडु में विजय की शपथ में हो रही देरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए क्यों नहीं बुलाया जा रहा है।

तमिलनाडु की राजनीति में शुरू से फिल्मी सितारों अभिनेत्रियों का बोलबाला रहा, लेकिन इस बार विजय ने जो किया वैसी दबंगई की कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती।

0: विजय की टीवी के पार्टी का पहले ही चुनाव में सबसे ज्यादा 108 सीट जीतना किसी फिल्मी कहानी जैसा ही है, लेकिन विजय की शपथ राज्यपाल की शर्त के आगे ठहर गई। ऐसे में 108 सीटें जीतने वाले टीवीके को कांग्रेस का समर्थन तो मिला, लेकिन बहुमत का जादुई आंकड़ा भी दूर है। सवाल है कि क्या नंबर गेम में विजय का रथ फंस जाएगा। टीवीके की जीत के बाद विजय के समर्थकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो अपने हीरो को मुख्यमंत्री बनते देखने के लिए चेन्नई पहुंच गए, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी।
1: We want to give support for Alunar, Governor. We want to support for Vijayanna. We want to give one chance to Vijayanna for taking Padavi Pramanam.
0: Vijay, जहां शपथ ग्रहण स्थल पर परेशान हो रहे थे, तो लोक भवन के भी चक्कर लगाते दिखे। राज्यपाल से उनकी मुलाकात भी हुई, लेकिन बात नहीं बनी। विजय की पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित न करने की वजह ये बताई गई कि वो अब तक विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए पर्याप्त विधायकों का समर्थन नहीं जुटा सके। तमिलनाडु लोकभवन सूत्रों के अनुसार राज्यपाल ने आश्वासन दिया कि वो किसी दूसरी पार्टी को नहीं बुलाएंगे। टीवीके को समर्थन करने वाले विधायकों के दस्तखत समेत संख्या पत्र पेश करने होंगे, उसके बाद विजय शपथ लेंगे। विजय की शपथ में लगे इस ग्रहण पर बड़ी बहस शुरू हो गई। पूछा जा रहा है कि विजय की पार्टी जब सबसे बड़ी है तो फिर उसे सरकार बनाने के लिए क्यों नहीं बुलाया जा रहा? क्या बिना बहुमत दिखाए सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी को नहीं बुलाया जा सकता? सवाल कई हैं, लेकिन विजय की ताजपोशी में हो रही देरी उनके समर्थकों को बेचैन कर रही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, लेकिन किसे बुलाया जाए इसके लिए कोई विशेष उल्लेख करते हुए फॉर्मूला नहीं दिया गया। ये राज्यपाल के स्वविवेक के ऊपर आ जाता है। यही कारण है कि ऐसे मामलों में राज्यपाल की भूमिका खास हो जाती है। संविधान विशेषज्ञों के मुताबिक राज्यपाल का पहला दायित्व ये सुनिश्चित करना होता है कि जिसे भी मुख्यमंत्री बनाया जाए वो सदन में बहुमत साबित कर सके। ये नहीं कि राज्यपाल किसी को आमंत्रित करें और सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद वो अपना बहुमत सिद्ध न कर पाए। तो क्या इसीलिए विजय को इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि उनके लिए समर्थन को लेकर बाकी पार्टियों में बेचैनी बढ़ती जा रही है? तमिलनाडु की AIADMK के 28 विधायकों को पुडुचेरी के पूरन कुप्पम के एक निजी रिजॉर्ट में ठहराया गया है। बताया जा रहा है कि सभी विधायक फिलहाल रिजॉर्ट में मौजूद हैं। हालांकि उन्हें वहां क्यों रखा गया है और पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी इस पर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन माना जा रहा है कि ये वो विधायक हैं जो विजय को समर्थन देने के लिए पार्टी तक छोड़ सकते हैं। विजय की टीवी के जब सरकार बनाने की कोशिशों में जुटी है, इस बीच उसे समर्थन देने को लेकर CPI, CPM और VCK के नेताओं में लगातार मंथन चल रहा है और जो विजय को सरकार बनाने का मौका दिए जाने की वकालत कर रहे हैं। टीवीके की तरफ से लेफ्ट से समर्थन की औपचारिक चिट्ठी भेज दी गई है। वही स्टालिन की तरफ से भी कहा गया कि DMK 6 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएगी और जनता ने जो बदलाव चुना है उसे मौका दिया जाना चाहिए। स्टालिन के इस बयान के बाद AIADMK के साथ उनकी सरकार बनाने की चर्चा खत्म हो गई। एक्सपर्ट का मानना है कि स्टालिन ऐसा करके विजय को जनता की नजर में और बड़ा होने का मौका नहीं देना चाहते। अगर DMK सरकार बनने से पहले ही जोड़ तोड़ या दबाव की राजनीति करती तो विजय खुद को सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले हीरो के रूप में पेश कर सकते थे, लेकिन अब स्टालिन ने पीछे हटकर विजय से कह दिया कि ठीक है, जनता ने मौका दिया है, अब काम करके दिखाओ। इससे विजय के पास भविष्य में कोई बहाना बनाने का मौका कम रहेगा और उन्हें खुद को साबित करना होगा। स्टालिन के बयान ने राज्यपाल पर भी दबाव बढ़ा दिया, क्योंकि जब सबसे बड़ी पार्टी सरकार बनाना चाहती और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी DMK इसका विरोध नहीं कर रही है तो फिर राज्यपाल के लिए विजय को रोकना मुश्किल हो गया है।
2: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: बंगाल में राज्यपाल ने भंग की विधानसभा, आज बीजेपी विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा नए सीएम का चेहरा, अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के बाद भी नहीं थम रही है बंगाल में हिंसा, हावड़ा के शिवपुर में टीएमसी और बीजेपी में खूनी झड़प, बमबाजी में बीजेपी के दो कार्यकर्ता घायल। बिहार में सम्राट कैबिनेट के विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा, सीएम के पास गृह स्वास्थ्य मंत्री बने निशांत कुमार, विजय सिन्हा को मिला कृषि मंत्रालय। तमिलनाडु में सरकार गठन पर गहराया सस्पेंस, सूत्रों के मुताबिक डीएमके और एआईएडीएमके में गठबंधन की खबरों से नाराज है टीवी के, बड़े पैमाने पर इस्तीफे का विचार कर सकते हैं विधायक। और नासिक टीसीएस धर्मांतरण के मामले में फरार फिदा खान को गिरफ्तार किया गया, छत्रपति संभाजी नगर से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने समेत कई आरोप हैं, 25 दिनों से लापता थी। और अब बात करेंगे बंगाल के खूनी खेल की। 4 मई को बंगाल चुनाव के नतीजों का ऐलान कर दिया गया था, नतीजे आते ही सुरक्षा के तमाम दावों के बावजूद बंगाल में चुनावी हिंसा का पुराना पैटर्न लगातार जारी है। बंगाल की कानून व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती है आज, क्योंकि बीते दिन बंगाल के सीएम के बड़े दावेदार और बीजेपी के सीनियर नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई। 9 मई को शपथ ग्रहण से पहले बेखौफ कातिलों ने बंगाल की शांति पर ग्रहण लगा दिया। अब सवाल यह है कि बंगाल की राजनीति के रक्त चरित्र पर लगाम लगेगा कब? क्या बंगाल में बदलाव नहीं बल्कि बदले की सियासत चलती रहेगी?
1: बंगाल में सबसे सनसनीखेज हत्याकांड, शुभेंदु अधिकारी के पीए की निर्मम हत्या, विदेशी हथियार और किराए के खातिर